मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

命灭汤鸡扒来浪浪给阿鲁命

0: lopona porong nang litum kar bilun bari ma chai mek ang deng long son son alun arju long tang lo la ke akashwani difu non studio apor por phai troxy chok da policy non malam so phi pen lote delhi pen ga pache tak hindi lam pen birta arju long pola pen por phai troxy ra minute pho chok lote english lam pen birta arju long ikbo
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुडकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान SLR राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के

0: लाके आकाशवाणी दिफू नाले तुमच्या मेकारजिलोंग बोम लाके एफ एम बॅनालोंग मेगाहर्स फारोय सिरा तोक बरा सिर कॅप रेस एप लपेन अनपार्टा न्यूज ऑन इयर पुलपांग सो एप अलोंग पेन्सिटामे नाले तुम जाय मेक आर जुलोंग इग्जी नॉन स्टेडियो अपोर पॉरफाय ट्रॉक्सिरा मिनिट कॅप चॉकटांगलो अदुंथु जुटांग हर ची अजय मेक अंग डेंग अलोंग चिहु चिपुत आर जुक लोनांग चिहु चिपुत अथे पिके सेनेम पुलपांग सो अपुथाक हुदबांग प्रदीप रंगभार लापेन कामसिं इं ति आंबं चिहु चिपुत आरजु इग्लोनांग
1: पिनी लदा आकाशपानी दिफु स्टुडियो लो कार्बी लामेट लामचों लापेन के लाम गुरु पुले पुदा सितमे लापेन की जुतांग हिन पेनांगान के थेकरिया तुम दुलो हाला बांग सोंग बोंग अलांग लिता इट नुतलो अलांग लिके मदुता कालिलो सर काम सिंगिंग ती इलि तुम निंगकरों में मेलाम लो अलांग लि नोन स्टुडियो लो सिदरो अलांग लि पेन पिनी कार बिया जुतांग अलाम पुथा सि जसे मेट पेट चिंकी चिंगवाय पुनपो तांते अप्रांग सि इंटिय के हाय नलि फान सुरी सुरी निंगकंग सम करोम नो पर सिदलो
2: अके हाय रोंग फार सांग हु नालिता नीलि फान कार बिया खे अजुतांग जुबात निम रकम थेग वे काली पु वे फिस तमे अमाना पेंग पेन नांग के हांग लपेन ते कार्बी आंगलोंग दिफु ला रेडियो सेंटर पेन के पचे टाक पोन अलोंग नीली फंता मान पेंग नांग हांग पोट नाली फंता कार्डम ना पजी रिल कार्डम
1: कार्डम कुरंग थु इंति अके हाय पिनी जसे मेट पे अबंग के इली तुम कार्बी अजुतांग अलोंग हा फिसर फुसरांग थुन पेन के वांग बम लपेन के इली तुम पचे का कोने पिन इली तुम खाइलो लापांके सेनेमा रोन लासी सेनेम पुकु पिलोमा लापेन सेनेम पसन को आनलोमा लाका दो कवे अलम थे अपुथक नॉन ओवे की मिया तुमके कचिनी ने लापेन के कचिनी जी पुस्ता में कचिनी जी अधिम तोवार थेक लोंग लेता मसी नॉन लिपाना हांग नंकोक लो लासी ला सेनेम कु पिलोमा लापेन के सेनेम पसन को आनलोमा ला आंग तोन अलम थे थान पचन मी था
2: तो तांगते इली तुम कार्बिया खे अफुर की मोलोंग के लोंग पोन माथे इली तुम कचे थान पोन आके सार सार अकाय हुद पेन कार्बी आखे पीरथे नांके प्लांग दत पेन नॉन पुआन लबांगसो सेनेम कुसन सी आरोन के दोमा लबांगसो थाक चेथानुना आथेमा इली तुम कार्बी आखे के कप्रेक आखे एसन के काली आरोन आतांग आकाप्रेक दो बिनो नॉन इली तुम कार्बिया कोर्टे इंजिरतुम पिनांग आन काचेहांग काचेरोन अकादुरे थेतान माते काचेहांग अंता काचेचिनी सन्थे लापुसंसि कापे काखे माते केचे अहोम पारो कातुमके जे चेतोंग लगलिंता कोर्टे इक नी सितामे इली तुम कार्बिया खेगे मुनेता लिंग मासि इक कोर्टे মূর্তি কে চাহ দিন লাপুসন কে আর লাপেন তেলি তুম কার্বিয়া খেয়ে লঙ্কে কাছি এন কাছি দু পুস্তামে আর যে মিসেন পলিং লে আউ সুপিয়ে ফান কিচিপা চর লংজি লাপুকালি লাসি হাকু পেন লাংডাম পলতে কার্বি কুর ফডু লাবংস কুর ফং বং আকুর তিন তা আনিহু কাংথি লাসি হাকু ফুরকিমু পেন লাংডাম পলতে ইংতিয়া সর আনিহু কাংথিমকে তিমুং সর হেনলো সি ওসো কয়দা হুট পেন তা চিনি ল পেন বেক্রো তেরাং আতুমা আনি হু কাংথি মাংকে ইংতিয়া সরেন লাকে হলা ইলি তুম আদামাসার কে চেং চেং হুট কে হেমফুয়াং জির পেন লং মুক্রাং সি চেপা চড় লি হলা সুত পেন সি কিপু পট লাসি ইংহিয়া সর আনি হু কাংথি তা তিমু সর ওসো কয়দা কার বিয়ারে চো ওসো কয়দা হুসি চেপা চড় লাসি হলা স কাই হুট কে ইং তি লাপেন রংহাং তুমকে সাইদু দু
1: ও
2: বলা ইং হি পেন ইং তি তুমকে সাইদু রংহাং পেন সি পা সাইদু পসি সাইদু সাইখা পসি চিপুলো লাপেন তেরো নসর আনিহু কাংথি

0: pu akertang bikoklo hem kimi arlu volangno nang lut kertang athe ki hako hut ki thekiria tumki bang aphan kamin tor aphan habit avo nepsi ki lolo apotsi non puta hem kimi arlo volangno nang lut kertang pupu croasor wo theklo a ok chokertang teron asor loteron chuden kertang terang asor wo terang a ok chokertang ingti katharatum wo cherok a ok chokertang ingti hense katum ok hibong homa ok chokertang inghi asor arhi arong en kertang timung asor wo mumpo a ok chokertang bedum atum thap tok kertang kiling asor atum chihang pathi kertang lapen a ok ta chokertang lahaya kertang sar saratum kibi tekang ke karbiatum angbong kachipare ke joy ki jia phan lapen non puta ilitum kroibom
1: lapon por nang litum jutang har chi a jai mek ang teng along eliza teran pi ke than karbi atum kertang aron pulabang su alam jer ke than arjulong tang lo lake Akashwani Divu.
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात
1: अदुंधु लुन चे तो जाय मैं अंग देंग अलोंग लोन आर जो एक लुनांग के चेंग सी कार्बी कल्चरल सोसाइटी है तुम के लोन अलोन अलम थे किली किली कार्बी लांग पी पुला बंग सो लोन आर जो एक लुनांग

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरल में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और

0: कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में

वर्षा के मी चु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दि फलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महंग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जिलीपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंग हुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजोंग सी चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। खन तो आम धान खेती बालू खेती नष्ट है, नष्ट हम तो जो पैसा दे तेनालीर लाभ है, बाकी खेतियों को लोग लाभ तो पाने आम जेने पाल
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहिते जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144-47 लई कॉल करक।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: लाके आकाशवाणी डिफू नालिदम जाय मेकार जुलोंग बम लाके एफएम बेना लोंग मेगाहर्स फारोय सिरा टकबरा सिरकेप रेस एप लापेन पार्टा न्यूज ऑन इयर प्लपांगसो एप अलोंग पेंसितामी नालितुम आकाशवाणी डिफुआ जाय मैग आर्जुलोंग इक्जी।

0: প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল, আমাৰ বিকাশ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: আধুন্ধু ইংলিশ হলো না যায় ম্যাক আং দেং আলং হ্যান ইন হ্যান পলপাংস অ্যালবাম আলং লোরি উইলকে কিলুন আলোন আলাম থে হ্যান ইন হ্যান পলপাংস আলুন আর জুইগলো না।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। और श्रोताओं, आज दिन में 4 बजे सुनना ना भूलें कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। आज आप इसमें सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो। तो जरूर सुनिए ये कार्यक्रम। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं अल्ताफ राजा की आवाज में। दिल के टुकड़े हुए हजार ये एल्बम का नाम है। अरुण भैरव ने इसे लिखा है। अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की लिखी लिखा ये

आइए अब आपको सुनाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत, गीत संगीत ललित सेन का, एल्बम का नाम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी तो नजर मिलाओ, इस एल्बम का गीत अब सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में। रियाज और रहमान सागर ने इसे लिखा है और संगीत है अदनान सामी का।

अदनान सामी के गाए इस गीत के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंच

0: पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आयलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चांद का टुकड़ा इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। महेश और किशोर ने इसे संगीत से सजाया है।

0: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सावन कुमार टाक ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं येसुदास और अनुराधा पौडवाल के आवाजों में साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत। इंदिवर की रचना, उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आप

0: वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉयस एन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत, उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम अब क्या होगा।

इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी हां साथियों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम एक पहेली लेकर आते हैं इबारत के रूप में। आपको बुझानी होती है पहेलियां और बताने होते हैं वो शब्द जिनसे आज गीत बजने वाले हैं। तो चलिए जान लें एक बार कि कौन सी है वो पहेली और फिर आप बताएंगे वो शब्द। ध्यान से सुनिएगा। बात एक रात की थी, आसमान में चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति अपने साजन का इंतजार कर रही थी। हवा चली तो दिलवर की याद आई, याद आई तो नैना भर आए। तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। दिल ने कहा, वो आ गया। पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इस पहेली को लेकर आप सभी ने कई सारी बातें लिखी हैं और उन कमेंट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे।

मगर एक बात हम आपको आज की इबारत को लेकर बता देते हैं। तो वो बात ये है कि अक्सर हम जब पहेली बताते हैं, कोई पहेली सुनाते हैं या इबारत पढ़ते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं उनसे कोई भी गीत हो सकता है, मगर आज के जो गीत हैं उनसे कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना आज के कार्यक्रम में आपको क्या करना है। तो यूं तो अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताती हूं, जैसे ज्योति शब्द से हो सकता है आप समझे ज्योतिष कलश छल के ये गीत बजेगा, और फूल से शायद आप समझें कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गीत बजेगा। मगर नहीं, आज जो गीत बजेंगे वो कहानी के रूप में होंगे, यानी कि वो गीत ना सिर्फ शब्दों से जुड़ते हैं बल्कि पूरी पहेली की कहानी से जुड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, पहचानिए वो शब्द।

इस गीत में जो शब्द था, जी हाँ, वो यही शब्द था चांद। और शायद आप समझ गए होंगे कि चांद शब्द से और भी गीत हो सकते थे, मगर चूंकि इनमें नींद ना आने की बात हो रही है, तो ये हमारी कहानी से जुड़ता है, जो कहानी हमने पहेली में बताई है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है।

है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हों तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथ ही लिखते हैं, आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है। बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है। जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार, सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं, इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अंजान और प्रकाश मेहरा ने। एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नैन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से

0: होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है। और ऐसे में हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो वियोग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है। तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं दो बदन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए। तो इसमें याद शब्द था, और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में, उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो। मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं, और ऐसे और भी गीत

सकते हैं, हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने। कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा, इस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

0: He won for 6 against India on the third day of the second test in Colombo when reports last came in. Sri Lanka is trailing by 332 runs. For India, Manav Sudhar took India's fifth wicket, dismissing captain Dhananjay De Silva for 8 runs. India looking for quick wickets to bowl out the host and enforce a follow-on. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र

0: मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
3: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
4: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और

0: ही सी डॉट प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
2: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
3: मैं फेडेक्स और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
2: वी वॉन्ट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
1: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
4: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

0: 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

0: अभी आपने सुना चश्मे व दूर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल है?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं, कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सुनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे हाँ। ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना, उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता कि रुको रुको फेंको मत, फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: उन्हें तो हम खास तौर पर संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमें कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो की सह संस्थापक है MPR व्हीकल्स की, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
2: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना,
1: मजेदार।
2: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं।

0: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सपने खाते तो भी 1 किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी
1: तो
0: लाने के लिए।
1: बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से, है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सहेज के रख भी नहीं सकते,
0: फेंक भी नहीं
1: चलो
0: सकते,
1: अगले दिन
0: रख
1: खा
0: भी
1: ले,
0: नहीं
1: ऐसा भी नहीं।
0: सकते।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सकें।
0: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले
1: हाँ
0: अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी
1: बिल्कुल
0: हंसेंगे उन अनुभवों को पढ़ के।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की, तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
0: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
1: या
0: क्या।
1: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी, तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
0: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है छोड़नी हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी,
0: बिल्कुल, जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जिन जो संस्था सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे, ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा, बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीकों स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

0: अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एम्पियर ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देख कर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तो ऐसा करके फ्री में नहीं लाता।
1: बहुत अच्छी बात। सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं। मैसेज वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती हैं। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं, अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है।
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई लाकर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है, मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है, अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कही। और एक और मैं श्रुतन जो लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरे सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं, उसे समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है, यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा हल्की फुल्की बातों में। पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस से।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही,
1: नहीं नहीं नहीं आप पढ़िए।
0: एक एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं, मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं।

0: पहले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोकझोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
1: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना। आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं।
0: अच्छा, और साथ एक और श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है। ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता। लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं। वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
1: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। ये बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता 1 किलो करेला उठा रहा है या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
0: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: दीजिए। तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथ ही कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज ना मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना?
1: बिल्कुल,
0: डांट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले ही बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है,
1: सुनना है।

0: रानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते दिरे होते दिरे होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाए जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं
0: जी,
1: घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने

0: सामान जमा कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी ज़रूरत का नहीं है तो उसे किसी ज़रूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकिलिंग कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज़्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकिलिंग करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। यह विषय हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
0: क्या बात है। एक साथी कहते इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है
1: बिल्कुल।
0: इन्होंने।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ पूरा
0: कॉकरोच हो
1: वातावरण
0: जाएंगे।
1: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
0: जी। एक साथ ही लिखते हैं घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करे।
1: बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय हमें बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। यानी कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाले कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
1: वाह, इन्होंने तो गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
1: एक गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

अडुन्ठोबाङ लाङ्बी ओलाङ्बी लाके आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दनमर्लिया डुन्ठु नोमिला हन्से पिपेन किलुन आलोनालाम थे ला कर्ब्याङ लङ आर्जिक सेनाङ आलाङ्बी पेन किलुन लबाङ सलुन

वर्षा के मी छु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दि फुअलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे कि थी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जिलीपुते लद्दाख आकाशवाणी दि फुअलंग नंग हुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Lucky Akashwani Dipu Lapana Pornali Tum Kisan Vaniya Jai Mek Asami Salam Pen Arjulong Iktanglo Aduntu Hindi Lamarjana Lunang Deng Long Pen Kecheng Si Bobby Lamarjana Long Pen Lata Mangeshkar Lapen Selendra Singh Kilunalun Arjuik Senang Alunalam Te Chabi Khojai Totang Te Arjuik Senang Labang Solun
2: Bahar Se

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: Indian Air Force invites eligible boys and girls from all Northeast states and Sikkim to join us Agnivir Vayu in OS stream. Open recruitment rally planned at Nagaland Armed Police Training Center, Chumoke Dima, Nagaland from 31st August to 7th September 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.

0: kalang me piklo doctor nang liki thanalam the tangte doctor pini ke aporalam do kokapot si ili tum kaching ki che thanang je lam the ke do piklang te ma bonta me thi he ka porang bong pen meg dan ka chi pia puthak asona sona lam the ili tum che thandam long pot nang li phan churulo laili tum ka che than tang analam the radio nang kar judun arada tumta alle nang longdun pobosi kroilo nang legi klema sailong arnam le ahir jumela anso se nang papina la se pini ili tum chi hu chi pura lam jir ke la po an lengton iglo na putho nang li phan suri suriya kardom nang pajir iglo kardom
1: kardom la po na porna di tum ok pran jai mek ang denga long pen Megdan kachipia rui arni pachetondun si Megdan kachipia puthak doctor lokhimai BP lapen hutbang phi helvelin timong pia tumangbong chihuchiput arjalong iktanglo ok pranjay megang denglong pen ki lapan si kang toniklo
2: man ki baat hai jan jan ki sabhi ki kuch apni si संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात
1: लाके आकाशवाणी दीपू आदुंथु इंग्लिश लोन जाय मेक अंग देंग लोंग पेन किचेंग सी क्वीन किलोन लोन अर्जुक सनांग अलुनालाम थे वी आर द चैंपियंस तो तांग ते अर्जुक सनांग लबांग सोलोन

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की

0: अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
1: 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल ये बेनिफिट मिला है।
0: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
0: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड

0: हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
3: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
2: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
4: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
5: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
6: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड स्मिट ने

0: की भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीष शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद ए मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद ए मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों

0: तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Our correspondent reports that by bridging the digital divide, advancing financial inclusion and expanding access to digital financial services, UPI has empowered individuals and communities across the country while driving broad-based economic participation.
3: Today, one out of every two real-time digital payment transactions globally happens in India. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Last month, over 23 billion transactions were recorded through UPI across the country. UPI has emerged as the backbone of India's digital payment ecosystem and a critical driver of financial inclusion. The unprecedented scale achieved by UPI have also received global recognition. UPI is now operational across 11 countries, including France, Singapore, UAE, Sri Lanka, Bhutan, and Mauritius.

0: history of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. UPI completes a decade, making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representatives' talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। अदायगियों के मरबूत निजाम यूपीआई को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बरवक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायस फख्र है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिजाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फरोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बीजिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को आलमी डेटा सेंटर हब करार दिया है। उन्होंने आलमी कंपनियों की जानिब से 200 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के वादों को उजागर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी और ओनम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका अपनी पहली इनिंग्स में भारत से 238 रन पीछे है। अब खबरें तफसील से। अदायगियों की